0: कारण बाढ़, पहिरो, पहाड़ से और अन्य जगह से चाला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यह डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जात है। उ अवधि में यह अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए।
1: आकस्मिक बाढ़ आ सकत है। कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए।
0: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 1155 में यहाँ संपर्क करा जाए। साथेन विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 1234 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 1114 में यहाँ संपर्क करा जाए। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्याय अवधि पूर्व अनुमान, पूर्व सूचना, चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी।
2: समयमै पूर्व सूचना पाऊ, बाढी जोखिमबाट ज्यान जोगाऊ।
3: सर्वसाधारणले बाढीको खबर कसरी थाहा पाउने?
2: जल तथा मौसम विज्ञान विभागको 1155 नम्बरमा फोन गरेर नदीको बहाव र बाढीको अवस्थाबारे निशुल्क जानकारी लिने,
3: गाउँमा राखिएको साइरनको आवाज र नदी किनारमा राखिएको रङको अर्थ बुझ्ने,
2: स्थानीय एफएम रेडियो टेलिभिजन र मोबाइलमा आउने नेपाल टेलिकम एन्ड सेल अलर्ट एसएमएस नियमित हेर्ने,
3: रङको संकेत बुझौँ।
2: पहिलो रङ सतर्कता तह, नदीमा पानीको सतह बढ्दैछ, सजग रहनुहोस् र सामानहरू बाँध्न थाल्नुहोस्।
3: रातो रङ खतराको तह, बाढी जुनसुकै बेला गाउँ पस्न सक्छ, तुरुन्तै घर छोडेर सुरक्षित स्थानतिर जानुहोस्।
2: पूर्व सूचना पाएपछि तुरुन्तै गर्नुपर्ने तयारी, बाढी आउने चेतावनी पाउन साथ 1-2 घण्टा अगावै गर्नुपर्ने कामहरू,
3: परिवारका सबै सदस्यहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने र छरछिमेकलाई पनि सचेत गराउने,
2: नागरिकता जन्म दर्ता जगाधनी पूर्जा नगद र गहनालाई वाटर प्रुफ अर्थात् प्लास्टिकको झोलामा हालेर सुरक्षित राख्ने,
3: घर पालुवा जनावर तथा चौपायाहरूलाई दाम्लोबाट फुकाउने वा अग्लो सुरक्षित स्थानमा सार्ने,
2: विशेष गरी सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित आश्रय स्थलतर्फ लैजाने,
3: स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालित प्रबल परियोजनाद्वारा जनहितमा जारी।
4: मानिस अधिकारका साथ जन्मिन्छन्, बजारमा बिक्रीका लागि होइन, लोभ र प्रलोभनमा नपरौं, असुरक्षित बसाइ सराई नगरौं, सचेत बनौं, मानव तस्करको जालबाट बचौं, यौन शोषण, बाल विवाह, बाध्यकारी काम र दासत्व नियन्त्रण गरी महिला र बाल बालिकाको सुरक्षा सँगै सभ्य समाज निर्माणमा प्रतिबद्ध हौ। जनहितका लागि आफन्त नेपाल।
5: यो कृष्ण सार एफएम
6: 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: हुनी अध्यावधिक पूर्वानुमान पूर्व सूचना चेतावनी सम्बन्धी जानकारी लिइरहनुहोस्।
1: नेपाल रेड क्रस सोसाइटी
2: यो कृष्ण सार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: परे ओ परे।
1: जब से तुमको देखा है
2: सिंगापुर होलसेल
3: नेपालगंज सेतु विकास चौक
0: सिंगापुर होलसेल
3: नेपालगंज सेतु विकास चौक नामै काफी क्या दामी
0: लेडिज तथा जेन्स सबै उमेर समूह र सबै प्रकारका डिजाइनका फेन्सी कपडा पाइन्छ। आजै रोजौ है।
3: मन पर्यो त पर्यो पर्यो।
2: नेपालगञ्जमा एकमात्र ठाउँ होलसेल मूल्यमा खुद्रा फेन्सी कपडा किन्न, रोज्न, छुन, लगाउन पाइने स्थान सिंगापुर होलसेल।
3: सिंगापुर होलसेल सेतु विकास चौक अहिले जान पर्यो। हो सिंगापुर होलसेल मल नेपालगञ्ज सेतु विकास चौक। फोन 97 0695 92 45 98 28 36 50 65। सिंगापुर होलसेल मल।
4: यो कृष्ण सार एफएम
5: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: हाम्रो रंगाउँदै देश मेरो एभरेस्ट।
1: ओहो आज डाई हो नै मजा लागत हो मजा से दवाई करेला कहटु
2: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत
1: ए बात त ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त
2: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक अपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
1: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
3: दाई धेरै समयदेखि महिनावारी गडबडी सेतो पानी बग्ने र पेट दुख्ने समस्याले साह्रै दुःख पाएकी छु कहाँ जाँदा राम्रो होला
4: म पनि पहिला ग्यास्ट्रिक पाइल्स र पेटको समस्याले धेरै हैरान थिएँ पछि नेपालगञ्जको मेडिकेयर क्लिनिक गएँ त्यहाँ महिला र पुरुष दुवैका समस्याको उपचार र अपरेसन एउटै ठाउँमा हुने रहेछ अनुभवी विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा पाएपछि अहिले मलाई धेरै आराम भएको छ
3: हो र त्यहाँ के सेवा पाइन्छ त दाई
4: सुन त्यहाँ महिलाहरूका लागि बाँझोपन सेतो पानी महिनावारी गडबडी गर्भवती जाँच पाठेघर तथा स्तन सम्बन्धी समस्याको उपचार पाइन्छ र पुरुष तथा अन्य बिरामीहरूका लागि ग्यास्ट्रिक पाइल्स हर्निया एपेन्डिक्स थाइराइड पित्त थैली गाँठा गुठी तथा विभिन्न ल्याप्रोस्कोपिक र लेजर सर्जरी सेवा पनि उपलब्ध छ नि
3: हजुर मेडिकेयर क्लिनिकमा वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक दूरबीन तथा लेजर सर्जन डाक्टर कमर हसन अन्सारी र वरिष्ठ ल्याप्रोस्कोपिक स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमिरुन निशाले सेवा दिइरहनु भएको छ तपाईँ पनि आजै कुनै पनि चेक जाँच र अपरेसनका लागि नाम दर्ता गरेर ढुक्क बन्नुहोस्
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बिपी चोक नजिक उपमहानगरपालिकाको कार्यालय लाइनमा सम्पर्क नम्बर 97-639-11-786 र 98-224-92-377
5: मेडिकेयर क्लिनिक महिला र पुरुष दुवैको स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्य
1: खुशीके खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगञ्ज नेशनल अस्पताल बिपी चोक नेपालगञ्ज सम्पर्क नम्बर 081-536-465 98-239-80-665 वो 98-482-80-465

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
0: बर्जर पेन्स
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9850303479 र 9840821380
4: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेना कहटु
5: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत
4: ए बाट ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा का सुविधा मिलत त
5: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाउ उपचार गर्न सँगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक अपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पाजाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
4: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
5: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
4: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्म हुइना बिरामीन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्तेक बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत
4: ए ओसिड हो कल से बुढ़ो हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही टा
5: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9980206697 9850823697 वो 9804486697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
4: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ध्यार सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी
5: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
4: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइटी
5: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 98249806665 वो 98482804665

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840206697, 9850823697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829808665 और 9842880465। समय में यहाँ पूर्व सूचना पावा जाए, बाढ़ के जोखिम से जान बचावा जाए, विपद बाजा बजाई के ना आई, मने पूर्व सूचना तो नुकसान हो न दी।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1155 में यहाँ फोन करके नदी के तह और बाढ़ के अवस्था बारे में निःशुल्क जानकारी लीन जाए।
1: स्थानीय सायरन और झंडा, गांव में यहाँ रखा गया सायरन के आवाज लंबा या तो छोट, और नदी किनारे में यहाँ रखा गया रंग पेयर सतर्कता लाल खतरा के अर्थ समझो।
0: संचार माध्यम, स्थानीय एफएम रेडियो, टेलीविजन और मोबाइल में यहाँ आवा नेपाल टेलीकॉम एनसीएल के अलर्ट एसएमएस नियमित देखा जाए।
1: नदी के जलस्तर नापे वाला खंभा के रंग के बारे में जानकारी दी जाए। पेयर रंग सतर्कता तो नदी में यहाँ पानी की सतह बढ़ते है, सजग रहा जाए और सामान बांधे शुरू की जाए। लाल रंग खतरा के तह बाढ़ कोनो समय में यहाँ गाँव में यहाँ आई सकत है, तुरंत घर छोड़ के सुरक्षित जगह तरफ जावा जाए।
0: बाढ़ आवे चेतावनी पावे साथ एक घंटा पहले करे वाला काम, संपर्क और संचार, परिवार के सब सदस्य लोगन के यहाँ और टोल पड़ोसी के यहाँ सचेत करावा जाए।
1: अत्यावश्यक कागज पत्र और पैसा, नागरिकता, जन्मदर्ता, जगह धनी पुर्जा, नगद और वाटरप्रूफ प्लास्टिक के झोला में यहाँ रख के सुरक्षित रखा जाए।
0: घारी बग्गर के सुरक्षा, घर पलुआ जानवर और चौपायन के यहाँ गटई के डोरी और मुस्की खोल दिन जाए और ऊँचे जगह में यहाँ ले जावा जाए।
1: विशेष ध्यान, सौरिहन, गर्भवती, बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा और अपांगता भय व्यक्ति लोगन के यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता में यहाँ रख के सुरक्षित आश्रय तरफ ले जावा जाए।
0: स्थानीय सरकार समन्वय में यहाँ संचालित परवल परियोजना द्वारा जनहित में यहाँ जारी। मौसम पूर्व अनुमान संबंधी के सूचना
2: आवश्यक सतर्कता और पूर्व तैयारी अपनावे खातिर अनुरोध। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असोज 9 गते शुक्रवार से असोज 11 गते इतवार तक गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में यहाँ भारी से सैगर भारी बरसात और एक दो स्थान में यहाँ अति भारी बरसात के समेत संभावना रहा है।
0: वही मेरे के कोसी मधेश बागमती और सुदूर पश्चिम प्रदेश के सैगर स्थान में यहाँ भारी से भारी और कर्णाली प्रदेश के थोड़े स्थान में यहाँ भारी बरसात के संभावना रहा है।
2: भारी से सैगर भारी बरसात के कारण बाढ़ पहिरो पहाड़ से और अन्य जगह से चहला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यहाँ डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जात है। उ अवधि में यहाँ अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए।
0: आकस्मिक बाढ़ आ सकत है। कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए।
2: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 1155 में यहाँ संपर्क करा जाए। साथेन विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 1234 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 1114 में यहाँ संपर्क करा जाए। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्यावधि पूर्व अनुमान पूर्व सूचना चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी।

0: जनता केबल पांच दशक देखी।
1: मौसम पूर्व अनुमान संबंधी के सूचना।
2: आवश्यक सतर्कता और पूर्व तैयारी अपनावे खातिर अनुरोध। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असोज 9 गते शुक्रवार से असोज 11 गते इतवार तक गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ स्थान में है भारी से सैगर भारी बरसात और एक दो स्थान में है अति भारी बरसात के समेत संभावना रहा है।
1: वही मेरे के कोसी मधेस बागमती और सुदूर पश्चिम प्रदेश के सैगर स्थान में यहाँ भारी से भारी और कर्णाली प्रदेश के थोड़े स्थान में यहाँ भारी बरसात के संभावना रहा है।
2: भारी से सैगर भारी बरसात के कारण बाढ़ पहिरो पहाड़ से और अन्य जगह से चहला वाला माटी बह सकत है और शहरी और तराई क्षेत्र में यहाँ डुबान के जोखिम भय कारण से आवश्यक सतर्कता अपनावे और पूर्व तैयारी के खातिर अनुरोध करा जात है। उ अवधि में यहाँ अत्यंत जरूरी न हो तो दूर और रात के समय में यहाँ यात्रा बिल्कुल न की जाए।
1: आकस्मिक बाढ़ आ सकत है। कुलवा नाला के नेरेन बस्ती पहिरो के जोखिम वाला स्थान और कुलवा नाला के किनारे बस्ती के बासिंदा लोगन सैगल चलाक रहा जाए।
2: बरसात और बाढ़ के बारे में जानकारी ले खातिर 1155 में यहाँ संपर्क करा जाए। साथेन विपद में यहाँ मदद मांगे खातिर 1234 में यहाँ नेपाल प्रहरी के हटलाइन 100 और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के हटलाइन नंबर 1114 में यहाँ संपर्क करा जाए। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण और व्यवस्थापन प्राधिकरण और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के सामाजिक संजाल से प्रकाशन प्रसारण होए वाला अध्यावन पूर्व अनुमान पूर्व सूचना चेतावनी संबंधी जानकारी लेते रह जाए। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी।
3: बैक टू बैक, बैक टू बैक।
4: हिंदी सॉन्ग ऑन
3: स्टे ट्यून्ड।

0: तेस्रो बुधबार सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
1: प्रत्येक महिना हार्दिक आईपीएफ काठमाडौँका निसन्तान बाझोपन महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
0: अत्याधुनिक प्रयोगशाला इको कार्डियोग्राम इको ईसीजी डिजिटल एक्सरे सेवा।
1: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
0: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
1: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि एनआईसी एसिया बैङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला कारकान्तो चोक नेपालगञ्ज।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टर्नल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
5: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउनै गाह्रो।
4: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
5: भन्न त सजिलो छ, तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाँचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
6: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
7: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।
8: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
9: छी दादु, हो फे ठाहानी हो कि का उहो त हो जे बीएस सिलाई मेसिन सप्लायर्स।
8: बीएस सिलाई मसिन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मसिन पैठे बाबु?
9: उहाँ त अनमोल उषा ओ ताज ब्रान्ड का संग मेरमेरी कंपनी का सिलाई मेसिन बिक्री ओ मरमट कई जिठा। एक रक संग मेसिन सम्बन्धी सक्कु पाठ पुर्जा हो सामान फे पाजिठा। अट्रगेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
10: एक संगे दस्या देवारी हो, छठ त्योहार सम्म 5-30% सम्म ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
8: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाँके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98-481-28-318 और नंबर बा 98-224-52-478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
11: Back to back.
12: In this song on
11: Stay tuned.

0: Extreme energy drink.
1: Time check. अहिले ठीक 2 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है. कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका.
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए. हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है. उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है.
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है.
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए. संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037.
5: नींद नाए हमको हाए जग
6: सोचे भन्दा सस्तो मा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्नीचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज.
7: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि. अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ.
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि.
7: सम्पर्क 9705118470.
6: सोफा हब नेपालगंज,
7: विश्वासमा नम्बर 1,
6: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट.
3: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं. कहाँ जाए तो बढ़िया रही.
8: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें. बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए. वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है. अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है.
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया.
8: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है. और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है.
9: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देत हैं. आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तह दिल हुआ जाए.
8: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ. संपर्क नंबर 9764911786, 9824923377.
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य.

0: जब से तुमको देखा है
1: सिंगापुर होलसेल
2: नेपाल गन सेतु बिका चोक
3: सिंगापुर होलसेल
2: नेपाल गन सेतु बिका चोक नामै काफी क्या दामी
3: लेडिज तथा जेन्ट्स सबै उमेर समूह र सबै प्रकारका डिजाइनका फेन्सी कपडा पाइन्छ
4: आजै रोजौ है
2: मन पर्यो त पर्यो पर्यो
1: नेपालगञ्जमा एकमात्र ठाउँ होलसेल मूल्यमा खुद्रा फेन्सी कपडा किन्न रोज्न छुन लगाउन पाइने स्थान सिङ्गापुर होलसेल
2: सिङ्गापुर होलसेल सेतुबेका चोक अहिलेै जान पर्यो हो सिङ्गापुर होलसेल मल नेपालगञ्ज सेतुबिका चोक फोन 97-0-695-92-45 98-28-36-50-65 सिङ्गापुर होलसेल मल
5: ब्याक टु ब्याक ब्याक टु ब्याक
6: इन दिस सङ अन
5: स्टे ट्युन
7: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ
8: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है
7: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे
8: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा

0: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
1: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580 30479 र 98480 21380।
4: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
4: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
5: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
4: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
5: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
4: सम्पर्क नम्बर 081535717।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
6: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगञ्ज छ, फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98480 2697, 98580 2697 और 98014 83697।
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
7: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
6: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
7: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
6: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले, साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था की।

0: लगा है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: Back to back, back to back. In this song on. Stay tuned.

अपर्च्युनिटी 1900 बार शिक्षित सबको अवसर में प्रस्तुत सुविशु अपर्च्युनिटी यस योजना अंतर्गत ग्राहक पाने 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 में र 65 भन्दा बड़ी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 में साथ ही दामी म्यूजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निःशुल्क शर्त र नियमहरु लागू हुने छन् थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np सुबिसु

0: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए। वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
1: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
0: विशेष सुविधा
1: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
2: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

0: ರಂಗಾವತೈ ದೇಸ್ ಮೇರು ಎವರೆಸ್ಟ್
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथे टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद नाए हमको हाए जग सोता है।
4: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
5: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
6: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
5: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
6: फोन नम्बर 081-532-375।
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही हुआ का सेवा मिलत है तो भैया
7: सुनो। हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया एपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 9749-11786 9824-92377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: Back to back. Back to back.
11: In this song on
10: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: रंग बहार
3: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: बर्जर पेंस ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि।
2: घर रंगाऊ खुशी बढाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ। बर्जर पेंस

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी